गड़बड़। अमेरिका जी सेवा। कार्ड डेबिट कार्ड नंबर पर AC215724 7110 and then going to 112, clearing out the south passport. Alright, set on location, over.